राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये वो सहारा है जो टूटे हुए मन नूं भी हौसला दिंदा है। जिथे राम जी का नाम गूंजता है उथे डर नहीं रहिंदा, उथे सिर्फ विश्वास ते शांति वसदी है।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे।

एफएम न्यूज हेडलाइंस। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन मीटिंग आज नवी दिल्ली में शुरू हो रही है। सरकार ने घरेलू कीमत काबू हेठ रखने लिए इस साल सितंबर तक चीनी की दरामद उत्ते पाबंदी लाई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मीह नाल संबंधित घटनावां च 60 लोगों की मौत। पंजाब में मौसम महकमे वालों कई थावां उत्ते अज तेज हवावां सने बारिश का जैलो अलर्ट जारी। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरैक्टर प्रवीण सूद के कार्यकाल नूं 1 साल लई वधा दिता गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज चौहान नाल मुलाकात की ते सूबे नूं दरपेश वख-वख खेतीबाड़ी चुनौतियां बारे जाणू करवाया। कौमी जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन नाल जुड़े पंजाब के एक लोड़ींदे नारको दहशतगर्द इकबाल सिंह शीरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियां नाल तालमेल करके बटाला दे पिंड भोमा दे दो व्यक्तियां दे कातलां नूं भारत भूटान सरहद तो गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार दे एनआरआई आए मामलों बारे मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने ऑनलाइन मिलनी करके विदेशों विच वसदे पंजाबियों दीआं समस्यावां शिकायतां अते सुझाव सुने।

दोस्तों दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म तो गीत सुन के हटे हैं तुसी तुझे देखा तो जे जाना सनम जिसनों आवाज़ दिती है कुमार सानू ते लता मंगेशकर ने इस दौर दे जिहड़े गीत है ये सिर्फ हिट ही नहीं सन हिट दे नाल नाल ये अपने समय दी म्यूजिक स्टाइल रोमांस इमोशंस अते ऑडियंस टेस्ट लई भी रिप्रेजेंट करदे सन ते जेकर गल करिए प्योर रोमांस सॉफ्ट मेलोडी अते इमोशनल लिरिक्स जिहड़े है 90 दे दहाके दे लव सोंग्स दा स्टैंडर्ड सैट कीता होया सीगा ते हुण इसे तरह अगला जिहड़ा गीत है बड़ा सोहणा है हे रामा रंगीला मूवी तो जिसनूं गाया होया है हरिहरन ते स्वर्णलता ने तो जिहड़ा कंपैरिजन किया है ए आर रहमान ने बॉलीवुड म्यूजिक नूं जिहड़ा वैस्टर्न टच दिता सीगा इस गीत दे विच प्लस इलैक्ट्रॉनिक टच दिता सीगा उसने फिल्मी दुनिया नूं जिहड़ा है बॉलीवुड नूं अलग ही पहचान दे दित्ती सी ते तुसी इस पहचान दा आनंद माणो क्योंकि जिहड़े गीत आ ना साडे दिल नूं छूंदे ने ते दिल नूं छूण वालियां गल्लां वी हो रहियां है फिल्मी गल्लां वी हो रहियां ते फिल्म दे विच हिंदी फिल्मां दे विच किहड़े किहड़े सोंग सोहणे आ उस बारे गल्लबात कर रहे हां ते सुनते रहो FM रेनबो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एफएम न्यूज हेडलाइंस। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिन मीटिंग आज नवी दिल्ली में शुरू हो रही है। सरकार ने घरेलू कीमतों काबू हेठां रखण लई इस साल सितंबर तक चीनी की दरामद उत्ते पाबंदी लाई है। उत्तर प्रदेश में लंघे 24 घंटों में मीह नाल संबंधित घटनावां च 60 लोगों की मौत। पंजाब में मौसम महकमे वालों कई थावां उत्ते अज तेज हवावां सने बारिश का जैलो अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरैक्टर प्रवीण सूद के कार्यकाल नूं एक साल लई वधा दिता गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज चौहान नाल मुलाकात की ते सूबे नूं दरपेश वख-वख खेतीबाड़ी चुनौतियां बारे जाणू करवाया। कौमी जांच एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन नाल जुड़े पंजाब दे एक लोड़ींदे नारको दहशतगर्द इकबाल सिंह शेरा नूं गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियां नाल तालमेल करके बटाला दे पिंड भोमा दे दो व्यक्तियां दे कातलां नूं भारत भूटान सरहद तों गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब सरकार दे NRI मामलों बारे मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने ऑनलाइन मिलनी करके विदेशों में वसदे पंजाबियों दीयां समस्यावां शिकायतां ते सुझाव सुने। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि भारत नूं ऊर्जा सप्लाई नाल संबंधित सारे समझौतियां नूं पूरा किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो दिन शिखर सम्मेलन लई चीन के राजधानी पेईचिंग पुजे ने। आईपीएल क्रिकेट विच लंघी रात रॉयल चैलेंजर बंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स नूं 6 विकटां नाल हराया है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी।

लो जी प्यार दा भुलेखा खा के साडे कोल एक दोस्त पहुंच चुके आ, नेड़े आ गए ने, देखदे आ कौन ने। हैलो जी, हैलो हैलो, मैनू लगदा दोस्त जिहड़े गल करके साडे नाल गाणा दस के तां चले गए। इन्हां ने कहा सीगा कि जमुना जट जी दी आवाज़ दे विच फुल्ला महक नूं संभाल वाला जिहड़ा इह गीत सुना दिओ, ते जरूर सुनावांगे जी। ते दोस्त जिहड़े आ उह दुबारा ट्राई कर सकदे ने फिर भी, पर असीं गीत उहनां दा जिहड़ा पसंदीदा असीं जरूर सुनावांगे। ते तुसीं ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, 0181 23 44 174 ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ FM ਰੇਨਬੋ ਦੇ ਉੱਤੇ।

0: पता भी ना चलू हियर वी गो विद एफएम रेनबो
1: एफएम एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुण तुसीं सुणोगे प्रोग्राम मिडडे मेलोडीज़।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता हो।

0: नगर साहिबा, मिर्जी दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलांच तेरे वीरा तो कोहां दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते घर बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुनदे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।

व्हाट्सएप दे उत्ते अगली लिखत आई है। लिखन वाले ने अपना नाम भेजा है कि भुपिंदर सिंह पिंड टीचा अमृतसर तो कहिंदे कि तेरे अगे मेरा कैसा जोर नहीं, पर एक गल दसा तेरे सिवाए मेरा कोई होर नहीं, भुपिंदर सिंह कोई बंदा मतलब खोर नहीं। अगे लिखा कि तेनू कह कह के मैं सच्ची थक गया हाँ, मेरा भी मन हुण अक गया है, पता नहीं मैं तेनू की शक गया, तू अपने आप नू कर मेरे तो वख लिया है। किताब का नाम है विछड़ना जरूरी सी। ते हर बार मैं गल करती हूँ कि एवरग्रीन राइटर तो साढ़े को है ही ने, जिहड़े कि हमेशा हमेशा दे लई अमर ने, उन्हां दीआं लिखतां अमर ने, पात्र साहब शिव कुमार बटालवी ते होर भी बहुत सारे ने, जिवें पाश हो गया। लेकिन अज कल जो चल रहा है उहदे मुताबिक कहिंदे कि एक वार मेरे वल तां वेख करके सज्जणा, एक वार गल तां वेख

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। जी हाँ, आकाशवाणी का विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आज हम बात करने जा रहे हैं गर्मी में होने वाली पेट की आम बीमारियों के बारे में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब आ चुके हैं, डॉक्टर गोविंद मखारिया, हु इज प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और मैं हूँ सुजाता रथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू सो वेरी मच।
2: तो डॉक्टर साहब, माना जाता है कि सारी जो बीमारियां हैं ना वो पेट से ही शुरू होती हैं। खासकर के यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेटस का ये कहना है कि सारी जो बीमारियां हैं पेट से ही शुरू होती हैं। पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए आंतों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इंटेस्टाइन्स का। कभी दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से, या खाना ना खाने से, भूखे पेट रहने से स्टमक रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और खास करके गर्मियों के दिनों में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
3: एकदम सही बात है। मैं थोड़ी बात से सहमत हूँ भी और थोड़ा नहीं भी हूँ। ऐसी माना जाता है कि सारी बीमारियाँ पेट से होती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बीमारियाँ और भी तरीके से होती हैं, लंग्स की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, उससे पेट का कोई नाता नहीं है।
2: तो ये तो यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेटस के अनुसार सारी बीमारियों का जो संबंध है वो पेट से है। तो आज हम बात करेंगे कि पेट की आम समस्याएं गर्मी के मौसम में। तो शुरुआत यहीं से करते हैं डॉक्टर साहब कि कौन कौन सी आम समस्याएं हैं पेट की।
3: सबसे पहले तो सबको नमस्कार,

0: और थैंक यू सुजाता जी फॉर ए काइंड इन्विटेशन। गर्मियों में पेट की जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो पेट का इन्फेक्शन होना, क्योंकि हम क्या करते हैं जब बाहर निकलते हैं, कभी दूषित पानी पीते हैं, दूषित खाना खाते हैं, क्योंकि प्यास बहुत लगती है गर्मियों में, और जहां पानी मिलता है हम पी लेते हैं, तो अगर वो पानी में इन्फेक्शन है तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर पानी में इन्फेक्शन है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है और कोशिश करता है कोई इन्फेक्शन आपको ना लगे, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी में काफी दूषित और काफी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, काफी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उस कारण से वो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है और फिर आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसमें उल्टियां लगना, पेट में हल्का दर्द होना या कभी कभी लूज स्टूल होना, ये बहुत कॉमन बात है गर्मियों में।
1: तो एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे हम डॉक्टर गोविंद मखारिया जी के पास रेडियो डॉक्टर में।

0: तो इस बहुत ही सुरीले गाने के बाद हम वापस आते हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया जी के पास, जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और बात होने जा रही है गर्मी में होने वाली पेट की आम बीमारियों के बारे में। डॉक्टर साहब, कुछ कॉलर्स हैं, इनकी बात पहले सुन लें, उसके बाद हम मैसेजेस पर आएंगे। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी।
1: हाँ नमस्ते सुजाता मैम।
0: नमस्ते।
1: हाँ गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
0: जी जी गुरविंदर जी बोलिए।
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
2: नमस्कार गुरविंदर जी, नमस्कार आपको।
1: डॉक्टर साहब, एड आती है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो गर्मियों में अंडे खाना लाभदायक है या नुकसानदायक? दूसरा, जब अब जैसे चिलचिलाती धूप चल रही है बहुत ज्यादा, तो इसमें चिल्ड वाटर पीना भी नुकसानदायक हो सकता है क्या?
2: गुरविंदर जी, दोनों बात आपकी बड़ी अच्छी है। पहली बात तो कि चिल्ड वाटर आपको भी पानी पिए, लेकिन आप पानी स्वच्छ हो अच्छा होता है, और ठंडा पानी है तो पीने में अच्छा लगता है, लेकिन पानी कोई भी हो तो वो स्वच्छ होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कोई चिल्ड वाटर ही हो। दूसरी बात बताई आपने कि रोज खाओ अंडे, इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए एग व्हाइट इज वेरी गुड। अगर येलो को अवॉइड करें, जो येलो पोर्शन अंदर का होता है वो अवॉइड करें, बट येलो व्हाइट इज वेरी गुड। यस,
1: थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सुजाता मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार। और एक और कॉलर है। हेलो।
3: हेलो सुजाता रथ मैडम जी को हाथ जोड़कर नमस्कार, रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
0: जी जी रघुविंदर जी, हाथ जोड़कर आपको भी नमस्कार।
3: डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम।
2: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब। अक्सर ये कहते हैं कि गर्मियों में लेमन वाटर पीना चाहिए, वो बहुत लाभदायक होता है, लेकिन खाली लेमन वाटर पीना तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि शिकंजवी पी जाती है, और जब हम शिकंजवी पीते हैं तो उसमें चीनी भी होती है और नमक भी होता है। अब जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी है, उनके लिए शिकंजवी गर्मियों में कितनी लाभदायक है और कितनी हानिकारक है, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
2: रविंद्र जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी है, और दो इसको दो पहलू है। पहला पहलू बताया कि आपने शिकंजी में नींबू, अच्छा है पानी है नींबू है, और बात आती है कि इसमें सॉल्ट डालें या स्वीट डालें। इसमें गर्मियों में क्या होता है कि हमारी स्किन से पसीना निकलता है, और पसीने में सोडियम और पोटेशियम होता है, उसकी लॉस होती है, तो नमी कभी कभी गर्मियों में और काफी पसीना आया हुआ होता है और आपने काफी काम किया होता है, तो आपके बॉडी का सोडियम पोटेशियम कम होता है, तो थोड़ा सॉल्ट खाना कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो शिकंजी में आप सॉल्ट ले सकते हैं, पर जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वो तो ख्याल रखें इस चीज का। दूसरी बात है शुगर, और पीने में अच्छा होता है, मीठी शिकंजी बहुत अच्छी होती है थोड़ा, और सोडा डालें तो, लेकिन जो डायबिटिक्स है उनको अवॉइड करना चाहिए, बट अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैडम, जय हिंद।
0: जय हिंद रघुविंदर जी। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि गर्मियों के मौसम में सॉल्ट जाता है पसीने के जरिए, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन की आम समस्या हो जाती है, तो क्या डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है सर?
2: एकदम हो सकता है लो, और डिपेंड करता है कि हमारी स्किन से हम श्वास लेते हैं ना, तो बॉडी से वाटर लॉस होता है, वो लॉस का 400-500 ml, मान ली डेढ़ ग्लास पानी लॉस होता है पर डे हमारी बॉडी से, तो हम पानी पीकर उसको बराबर करते हैं। गर्मियों में अगर आप धूप पे चल रहे हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई बड़ा फिजिकल काम कर रहे हैं, तो लॉस बहुत होता है, और आप देखते पसीना काफी आता है, पसीने का मतलब जब पसीना लॉस हो रहा है तो उसमें वाटर है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, और भी काफी इसमें मिनरल्स होते हैं, तो उसका लॉस हो रहा है बॉडी से। इसे आप देखेंगे टेस्ट भी उसका कभी कभी सॉल्टी टेस्ट होता है, तो लॉस होता है, तो उस लॉस के कारण से बीपी कम जनरली नहीं होता है, बिकॉज लॉस बहुत ज्यादा नहीं होता उससे, बट लेकिन बॉडी से लॉस होता है। तो आदमी को जब पानी का लॉस होता है तो फीलिंग थर्स्ट की फीलिंग होती है, वो थर्स्ट तो लेट स्टेज हो गया, मतलब पानी काफी लॉस हो गया तभी थर्स्ट की फीलिंग होगी, बट उसके पहले आप पानी पिए। तो ध्यान रखें गर्मियों में प्यास लगे ना लगे पानी जरूर पिए,
0: पानी जरूर पीना चाहिए
2: अब इससे, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए। आई वुड से अबाउट 2 to 3 liters, 3 liters इज गुड।
0: मनोहरलाल गांधी जी का सवाल है सर कि कुछ भी खाया पेट का फूलना, ये किस कारण से होता है?
2: ये डिस्पेप्सिया।

0: क्या है महेंद्र जी, और इसका जो कारण होता है, जो सबसे कॉमन कारण है, दिस कॉल्ड फंक्शनल डिस्पेप्सिया। फंक्शनल का मतलब अंदर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसका एक परसेप्शन लेवल बढ़ जाता है। उस कारण से जब भी कुछ खाना खाते हैं तो लगता है कि पेट फूल गया है, तो एक फीलिंग होती है, उस दवा से ठीक हो जाती है।
1: ये सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है?
0: एकदम सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बताऊं आपको, हर एक पांच में एक व्यक्ति को ये तकलीफ है। तो कुछ व्यक्ति को ये तकलीफ लगातार चलती है, सालों साल चलती है। कुछ व्यक्ति को पटल खाने से होती है, उन्हें वो खाना सूट नहीं करता है। तो मान लिया कुछ लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस होता है या लेक्टोज इंटॉलरेंस, और उन्होंने वो लेक्टोज लिया, ज्यादा मात्रा में लिया, तो वो पूरा लेक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फीलिंग होती है ब्लॉटिंग सेंसेशन की, पेट फूलता उससे।
1: तो बिना दवा के भी ठीक हो सकती है? अगर हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर खाने से हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उस खाने को छोड़ देंगे खाना?
0: ये अगर मालूम चल जाए कि पर्टिकुलर खाने से होती है, सबसे अच्छा इलाज।
1: मनोहरलाल गांधी जी का एक और सवाल भी है कि पेट गैस की जो गोलियां हैं वो महंगी भी होती है और सस्ती भी होती है, तो महंगी और सस्ती गोलियों में क्या अंतर है?
0: जो गैस की गोलियां होती है आजकल, इससे कॉस्ट और जगह बहुत ज्यादा है, और हमारे कंट्री में बहुत कम है। 2 रुपये से लेकर करके 10 रुपये तक की गोलियां मिलती हैं। एक क्लास है, इसके बोलते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, उसका नाम है पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, वो सब एक जैसी हैं। और जो प्राइस डिफरेंस है, उसका दो कारण है। एक जेनरिक मेडिसिन आती है वो सस्ती होती है, जो ब्रांडेड होती है वो महंगी होती है। चीज वही होती है, वॉल्यूम वही होता है, मात्रा वही होती है, इसमें उसका एफिकेसी वही होती है, बट ब्रांडेड है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है, जेनरिक होती है वो कम एक्सपेंसिव होती
1: जी।
0: है।
1: तो अच्छा हुआ सर आपने ये हमें साफ कर दिया, कहीं हम ऐसा ना हो कि नहीं ये महंगी दवा है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगी करके सस्ती दवा को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
0: हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग गलत काम करते हैं। जो दवा बन रही है उसमें अगर मिलावट हो तो फिर दवा सस्ती भी होती है। वो फैक्ट्री जहाँ दवा बन रही है वहाँ पे सही तरह से क्वालिटी चेक नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ हो सकती है।
1: बेस्ट इलाज तो सर ये कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे जो दवा, हम वही ले जाकर।
0: एब्सोल्युटली।
1: एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। हेलो
2: हेलो सुजाता मैम को प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी प्यार भरा नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
2: हम जतिन सिंह बोल रहे हैं सीतापुर से।
1: जी बोलिए जतिन जी।
2: हमारे पापा है मैम, उनको कब्ज रहती है मैम, ठीक, और मैम कब्ज भी रहती है, पेट में दर्द भी होने लगती है, तो मैम इसका उपाय डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब को हमारा प्यार भरा सलाम।
0: जतिन जी नमस्कार आपको, और ये बताएं कि सीतापुर कहाँ पे है, ये कौन सी जगह, कौन से?
2: सीतापुर लखनऊ के पास है हमारा।
0: और वहाँ पे अभी कैसा है? वहाँ भी काफी गर्मी पड़ रही है।
2: हाँ काफी गर्मी पड़ रही है सर, टेम्परेचर तो दिन भी बढ़ता ही जा रहा है।
0: अब आपके क्वेश्चन पे आते, कि जैसे पूछा आपने कि आपके पिताजी को कॉन्स्टिपेशन है और पेट में दर्द रहती है, तो इसके बहुत से कारण होते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है, इसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बट ये कहना फोन पे या फिर रेडियो पे अच्छा नहीं है, क्योंकि किसके और भी कई कारण होते हैं, तो वो देख के उनसे बात करके समझ के कि ये तकलीफ कब से है और क्या सातवें सिम्टम होते हैं।
2: तब आज से ही है, आज से ही
0: एक दिन से है।
2: हाँ जी आज से ही है।
0: कुछ नहीं करें वो कल ठीक हो जाएगा, नो वरी।
2: अच्छा जी पक्का सर?
0: पक्का ठीक हो जाएगा।
2: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: जी जी थैंक यू। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत बहुत पानी पीना चाहिए, गर्मियों के मौसम में पानी जो है बहुत बड़ा इलाज है हर रोग का। डॉक्टर साहब अब एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में।
3: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
4: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
3: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
4: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@delhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे कि उन्हें गर्मियों का जो मौसम है वो अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, धूप में निकल नहीं सकते हैं सुबह कहें 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, और हमारी जो डाइट है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इससे पेट में प्रॉब्लम हो जाएंगी, तरह तरह की जाने बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन सावधानी रखते हुए हम इस गर्मी के मौसम को भी अच्छे से गुजार सकते हैं। तो आज रेडियो डॉक्टर में हम यही बात करें कि गर्मी में होने वाली पेट की आम बीमारियां क्या हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसलिए क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कैसे और क्या करके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं गर्मियों के इन दिनों में। डॉक्टर गोविंद मखारिया जी हमारे साथ हैं, वो इस प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब, एक सवाल है पूजा जी का फ्रॉम सुभाष नगर न्यू दिल्ली से। इन्होंने पूछा है कि पेट को हमेशा साफ रखने का क्या तरीका है और ऐसे क्या करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करें।

0: ये बड़ी अच्छी बात पूजा जी, और हम लोगों ने मिलकर कुछ इसमें बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे हाउ डू यू कीप योर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, और एक बात और भी करना चाहूंगा साथ में ही कि हाउ डू यू कीप योर लीवर हेल्दी। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। पहले आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, मतलब अपनी आंतों को पेट को हम कैसे ठीक रखें। तो पहली बात है कि आप पानी खूब सारा पिए, कम से कम 2 से 2.5 लीटर तो कम से कम पिए, और 3 पीते तो अच्छी बात है, पहली बात यह है। दूसरी बात, खाने में फाइबर्स जो फूड फाइबर्स होते हैं लाइक सैलेड्स फ्रूट्स जरूर लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करें, कि स्मोकिंग से जो हमारी फूड पाइप और पेट के बीच जो वाल्व होता है वो लूज हो जाता है, उससे हार्ट बर्न छाती में जलन होती है। चौथी बात है योगर्ट दही या कर्ड रोज खाएं, वो एक काइंड ऑफ प्रोबायोटिक एंड प्रोबायोटिक इज गुड फॉर हेल्थ। कुछ लोग प्रोबायोटिक दवा भी लेते हैं बट आई थिंक योगर्ट अच्छा दही इज बेटर। तो 4-5 चीज हमें ये जरूर करनी चाहिए अपने पेट को ठीक रखने के लिए। और दूसरी बात है अपने लीवर को कैसे सही रखें, अगेन 3-4 बात है। जो लीवर को खराब होने का सबसे कॉमन कारण आजकल दुनिया भर में है, दैट्स कॉल्ड फैटी लीवर। और हर एक तीसरे व्यक्ति को दुनिया भर में, बच्चा हो बड़ा या बड़े हो, सबको फैटी लिवर है। एवरी थर्ड पर्सन हैव फैटी लिवर। और फैटी लिवर का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि हम ज्यादा खाना खाते हैं और खर्च कम करते हैं, मतलब आवर डाइट इज वी टेक मोर कैलोरीज और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उस कारण से वो जो बॉडी के जो कैलोरीज है वो फैट बनके लीवर में और हमारे शरीर में जमा होती है, उससे मोटापा भी होता है और लीवर में फैटी लीवर भी होता है, और ये फैटी लीवर लॉन्ग टर्म में जाकर के लीवर खराब करता है। तो अवॉइड करें कि आप कम से कम खाना खाएं जितनी आपको जरूरत है, और फैटी फूड शुगर के फूड कम से कम खाएं। और दूसरी बात है रोज कम से कम 45 मिनट्स कोई फिजिकल एक्टिविटी, तेज चलना, फास्ट वॉक करना, दौड़ना, जिम जाना, घर पे वर्जिश करना, कोई भी एक्सरसाइज करना, ये सबके लिए बहुत जरूरी है।
1: तो डॉक्टर साहब, गर्मियों के मौसम में कुछ मौसमी फल होते हैं जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, इनका सेवन क्या कितना करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा इनका सेवन करने से क्या नुकसान पहुंच सकता है?
0: मुझे लगता नहीं कि इससे कोई नुकसान होगा, क्योंकि इसके अंदर की जो सर्टली जो डायबिटिक्स है उनको तो ज्यादा शुगर मिलेगी, जैसे आई डोंट थिंक वो कोई मेजर प्रॉब्लम है, बट ये अच्छी बात इस फ्रूट्स में है कि इसमें पानी काफी मिलता है आपको, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: यशपाल महाजन फ्रॉम दिल्ली, डॉक्टर साहब टाइफॉइड के बारे में प्लीज बताएं, इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? तो क्या तो डॉक्टर साहब यही जानना चाहेंगे कि टाइफॉइड का संबंध पेट से है तो क्या?
0: टाइफॉइड का जो इन्फेक्शन होता है सल्मोनेला से होता है, वो एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया जनरली दूषित पानी से ही मिलता है, तो कहीं पानी में इन्फेक्शन हुई, वही इन्फेक्शन वही पानी पिया और उससे सल्मोनेला का इन्फेक्शन हमारे शरीर में गया। तो ये बैक्टीरिया को, अगेन मैंने बताया पहले ही कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। अगर आप मान के चलें कि जो पानी दूषित है वो पानी सब लोग पी रहे हैं, बहुत लोग पी रहे हैं, बट कुछ लोग को टाइफाइड होता है, सबको नहीं होता टाइफाइड, इसका मतलब है कि कुछ लोगों में वो अपनी बॉडी इम्यून सिस्टम ने उसे ठीक कर दिया है, और कुछ लोगों के बॉडी इम्यून सिस्टम ने उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, उस कारण से वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करके वो फीवर करता है, टाइफाइड फीवर होती है, जो कि फीवर कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, इट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट फीवर। पेट में हल्का दर्द होता है इसमें, और इसकी जानकारी हमें पहले हम सोचते हैं फिर जानकारी करते हैं, ब्लड टेस्ट करके ब्लड कल्चर करते हैं, और ब्लड के और भी टेस्ट होते हैं, और फिर इसका इलाज होता है। टाइफाइड का पक्का इलाज है, एकदम ठीक हो जाता है, अगर इलाज ना करें और वो डायग्नोज अनडायग्नोज रह जाए, कभी कभी देखा गया है 3-4% लोगों को आंतें फट जाती है, वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है, पहले ज्यादा होती थी आजकल कम होती, क्योंकि अब मेडिकल साइंस सब जगह अवेलेबल है, तो उसका इलाज आजकल इजीली हो जाता है।
1: तो इसका सबसे जो मुख्य सिम्टम है वो है फीवर होगा, फीवर जरूरी है इसमें तब। हेलो,
2: हाँ हेलो,
1: हेलो, कौन सा बोल रहे हो
2: जी? मैं साकिर हुसैन बोल रहा हूँ, साकिर हुसैन इदरीसी जिला बिजनौर।
1: हाँ जी हुसैन साहब बोलिए।
2: जी मैम डॉक्टर साहब मेरा नमस्कार। जो मतलब मुझे ये, मैं सिलाई का काम करता हूँ, मेरा बैठने का काम है, मुझे जो गैस बहुत बनती है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मतलब कोई ऐसी घरेलू नुस्खा कोई ऐसा बता दें जिससे गैस ना कम बने।
0: घरेलू नुस्खा तो इसमें यही है कि आप थोड़ा सा लेमन वाटर लें, और कुछ दवा तो लेनी पड़ेगी आपको, आप 4-6 हफ्ते दवा लीजिए, आपको फर्क पड़ेगा।
2: सर एक चीज हो रहा है, मैं कोई ठंडी चीज खा लूँ, जैसे मुझे छींक बहुत आने लगती है ठंडी चीज खाने से।
0: ये भी देखा गया है कि ठंडी चीज आने कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: जी जी हुसैन जी, आपकी बात का जवाब दे दिया डॉक्टर साहब ने,
2: ठीक है।
1: हाँ आप संतुष्ट डॉक्टर साहब, ये गैस की प्रॉब्लम तो बहुत आजकल देखी जाती है, घर घर की कहानी हो गई है ये, तो इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब?
0: जो गैस के पहले

0: लगता है कि हर एक तीसरे व्यक्ति बताया आपको, हर एक तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम है, और अपनी कंट्री में नहीं है, दुनिया भर में है, हर एक कंट्री में ऐसी तकलीफ है। दो कारण होते हैं, एक तो पेट में जो गैस की मात्रा होती है ना, इक्वल होती है सबको, 200 ml, मान लीजिए एक ग्लास जितनी गैस होती है पेट के अंदर में। कुछ कंडीशंस में गैस ज्यादा बनती है, मैंने बताया लैक्टोजन इंटॉलरेंस, किसी को मिल्क की इंटॉलरेंस है तो दूध पचता नहीं है, दूध के नहीं पचने से जो पेट के जो बैक्टीरिया है वो गैस बना देते हैं उस कार्बोहाइड्रेट का। दूसरी कुछ फूड आइटम्स जो हम लोग कहते हैं फोडमैप, अगर फोडमैप ज्यादा ले रहे हैं, मतलब ज्यादा हमने हरी सब्जी खा ली या फिर कुछ फल ऐसे होते जो खा लिए हमने, तो उससे ज्यादा गैस बनती है। एक तो कारण ये हो गया, वो एक इम्पोर्टेंट कारण है। दूसरा कारण होता है कि गैस बनती नहीं है लेकिन फीलिंग होती है, खाना खाएंगे लगता है पेट फूल गया है, डिस्कम्फर्ट होती है, तो उसमें गैस की मात्रा ज्यादा नहीं होती है, वो परसेप्शन होता है कि गैस है अंदर में लेकिन गैस ज्यादा है नहीं। तो दो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इसमें।
1: एडवोकेट वारिस अली खान साहब है लखनऊ से, इन्होंने लिखा है कि मुझे कोलाइटिस और पाइल्स है, आप ये बताएं कि खाना किस तरह का खाना चाहिए, क्या मट्ठा रात में नहीं लेना चाहिए?
0: नहीं, मट्ठा ले सकते रात में, कोई इशू नहीं है इसमें। और जहाँ तक पाइल्स और कोलाइटिस है ना, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दिखना चाहिए हमें। पाइल्स बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 10% लोगों को पाइल्स होती है, बहुत लोगों को पाइल्स होती है कोई सिम्टम नहीं होते उसके, कुछ लोगों को पाइल्स होती है उससे ब्लीडिंग होती है, साथ में कोलाइटिस भी है। अब किसने बताया कोलाइटिस, अगर डॉक्टर ने बताया कोलाइटिस है पाइल्स है तो जांच जरूर होनी चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी,
2: ये डॉक्टर साहब से बात करना है कि पेट साफ नहीं होता है और एक महीने के बाद गोली खाना पड़ती है कीड़े की, क्या
0: आपका क्वेश्चन था कि पेट साफ नहीं होता और कब्ज रहती है उसका?
2: डॉक्टर साहब,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: मैं पूछना ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि एक महीने के बाद की दवा खाना पड़ती है कीड़े की
1: दवा खानी पड़ती है,
0: उसकी जरूरत नहीं है,
2: उसके बाद फिर 2-3 दिन पेट सही रहता है?
0: नहीं, वो तो वो अलग चीज है, आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है और मोस्ट कारण जो कॉमन कारण है कॉन्स्टिपेशन का वो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन है। अगर आपको स्टूल पर डे हो तो रोज होता है, लगता है कि आपको रोज कंप्लीट नहीं हो तो अलग चीज है, लेकिन कीड़े की दवा से कब्ज ठीक नहीं होती है। कीड़े की दवा एक बार खाई जाती है, बार बार नहीं खाई जाती है, एक बार खा लिया या 3 महीने रिपीट कर लिया, पर हर एक महीने दवा नहीं खानी है आपने, उससे नुकसान भी होते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, बात चल रही है गर्मी में होने वाली पेट की आम बीमारियों के बारे में, तो यहाँ हम कुछ और बीमारियों के बारे में जानना चाहेंगे जो इस मौसम में कॉमन है, तो कौन सी बीमारियां?
0: सबसे दो तीन चीज पहले बताया मैंने कि इन्फेक्शन वो बहुत कॉमन है गर्मियों में इस सीजन में। दूसरा डिहाइड्रेशन, गर्मी में आप हैं और आपने पानी ठीक से नहीं पिया हुआ है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन कभी लगता है कि आपको प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, गले में थोड़ी खराश सी हो रही है, ये तो आगे की बात होगी। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम इसके होते हैं जिससे लगता है कि आप थक जा रहे हैं, आप थकान का महसूस होना, एग्जॉशन, इट्स कॉल्ड हीट एग्जॉशन, या फिर लगता है मसल में क्रैम्प होना, तो वो भी एक लक्षण है कि आपको डिहाइड्रेशन है।
1: चक्कर आना
0: और वो तो आगे की बात होगी, और सिम्टम सिवियर होगी तो चक्कर भी आएंगे। साथ ही मेंटल फॉग, आप सोच नहीं पा रहे, आपकी यादाश्त कम हो रही है, लगता है कि आप भूल रहे हैं, ये सब लक्षण है हीट रिलेटेड, डिहाइड्रेशन के भी और हीट एग्जॉशन के भी। तो इसका एक ही तरीका है कि सब पता है कि हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें तो पसीने आएंगे और वाटर लॉस होगा ही होगा, तो हम क्यों नहीं पानी पी करके इसको ठीक करें।
1: आरती मिश्रा ने लखीमपुर खीरी से लिखा है कि वेरी ब्यूटीफुल एंड पेशेंट आंसरिंग बाय डॉक्टर गोविंद जी, तो आपके
0: थैंक यू आरती जी।
1: हाँ, और प्लीज टेल हाउ राइट और रॉन्ग इट इज इट टू ड्रिंक टी और कॉफी दीज डेज?
0: एकदम पी सकते हैं, टी कॉफी में कोई दिक्कत नहीं है। टी कॉफी में यही कहा गया है कि अगर बहुत टी और कॉफी लेते हैं तो उसमें मिल्क भी ले रहे हैं और चीनी भी ले रहे हैं, तो यू आर टेकिंग एक्स्ट्रा कैलोरीज। मिल्क लिया तो कैलोरीज है इसमें, चीनी ली तो भी कैलोरीज है, तो ये चीज सोचने की है। अगर आपका वेट ठीक है और तो बट 2 मिनट कॉफी जे डे विथ मिल्क एंड सुगर विल गिव यू मोर कैलोरीज एंड मे बी एड टू योर ओबेसिटी।
1: ओके,
0: बट ग्रीन टी लिए तो नॉट ए प्रॉब्लम।
1: अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर 102.6 आकाशवाणी FM रेनबो के साथ, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गोविंद मखारिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
2: सेहत से जुड़ी बहुत सारी बातें होती हैं गीत संगीत के साथ हमारे इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। तो श्रोताओं, क्या कहा जाता है कि आंतों की जो सेहत है उस पर लाइफस्टाइल का जबरदस्त असर होता है। ज्यादा कैलोरी वाले जंक फूड और शराब का अधिक सेवन, इसके अलावा रेशेदार भोजन और हरी सब्जियां ना खाने से पाचन तंत्र के रोगों का खतरा बढ़ जाता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर आज हमारे साथ हैं हमें बहुत सारी जानकारियां देने के लिए कि इस मौसम में, खासकर गर्मी के इस मौसम में, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और पेट की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर गोविंद मखारिया हमारे साथ हैं। एक बार फिर हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल जो हमने छोड़ दिया था और सोचा था कि हम बात में लेंगे, एक हमारे लिसनर है अंकित फ्रॉम कटक, इन्होंने ये पूछा है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन जो फास्टिंग करते हैं, क्या ये हमारे पेट के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है?
3: हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और इसमें लास्ट 10 ईयर्स में काफी रिसर्च हो रहा है कि स्पेशली अगर किसी को मोटापा है तो ये बताया गया कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो क्या फायदा होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि बहुत तरीके हैं, एक दिन आपने सब कुछ खाया और एक दिन फास्टिंग किया। फास्टिंग का मतलब है आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसका 25%। आपने अगर 1800 कैलोरी खानी थी तो आपने खाना है 300 कैलोरी दैट डे, राइट? सो दैट्स कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। और ये देखा गया है, बहुत सी स्टडीज हो गई है और देखा गया है कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें 1 साल तक तो आपका वेट लॉस होता है। बट अगेन ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसमें थोड़ी समझ भी चाहिए। हर एक व्यक्ति को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने चाहिए, बट ये इसका फायदा है।
2: हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी,
4: नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, बोलिए।
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब, मुझे पेट की तकलीफ है। ऐसे की बात है कि संडास को नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है। हेलो,
3: राइट राइट,
4: हाँ, तो उसको क्या है, नहीं होते तो त्रिफला लेना पड़ता। अगर एक दिन त्रिफला नहीं लिया तो दूसरा दिन टॉयलेट को होता ही नहीं, संडास होती ही नहीं। तो क्या त्रिफला लेना ठीक है या गलत है, क्या करें?
3: अब ये हमें बताया गया है कि फोन पे पर्सनल इलाज नहीं करना चाहिए।
4: हाँ जी,
3: कुछ और बात करनी चाहिए आपसे, कुछ समझना चाहिए कि आपका जो कब्ज है किस तरह का है, कितने लंबे वक्त से है, कितने और कोई सिम्टम है कि नहीं।
4: 6 महीने से।
3: तो मैं बताना नहीं चाहूंगा इस पे, फोन पे इस तरह का, फोन पे जनरल बात कर सकता हूँ कि कब्ज के लिए जो कब्ज है तो आप फाइबर्स डाइट लें और किसी डॉक्टर से मिलें। उसमें कब्ज की काफी दवाइयां होती हैं, बहुत तरह की दवाइयां होती हैं और हर एक कब्ज के जो कारण है वो जान करके दवा देते हैं।
4: लेकिन त्रिफला लेना वो ठीक है गलत है?
3: वो मैं नहीं कह सकता हूँ इस रेडियो पे। वो तो लेते हैं लेकिन उससे कुछ नुकसान भी होते हैं, बट मैं एडवाइस नहीं करना चाहूंगा कि आप ना ले या त्रिफला ले।
2: जी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको फायदा नहीं है तो आप किसी डॉक्टर से पूछें और उसके बाद फिर दवा चेंज करें, या डॉक्टर साहब रेडियो पर इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं?
4: नहीं, डॉक्टर साहब को मेरा पूछना था, मेरा कोई मेडिसिन ऐसा कोई चालू नहीं है बिल्कुल।
2: हाँ, तो आपको अगर ये प्रॉब्लम बहुत समय से है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं।
4: ओके जी, थैंक यू
2: जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, कब्ज
3: अच्छा मैं बताना चाहूंगा कि रेडियो पे, क्योंकि हर एक बीमारी के
2: अलग अलग कारण
3: होते हैं और रेडियो पे या किसी टेलीविजन पे उसका जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता कि वो गलत हो सकता है। वो जो मैं बताऊंगा उस व्यक्ति को वो सही ना बैठे तो फिर उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने प्रिंसिपल बनाया हुआ है कि रेडियो पे या टीवी पे कोई पर्सनल इलाज नहीं करते। हम सबकी बात करते हैं, बीमारी की बात करते हैं, पर पर्सनल इलाज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा लेकिन ये हमारी लिमिटेशन है।
2: जी जी बिल्कुल, हर व्यक्ति के जो कारण है किसी भी बीमारी के होने के अलग हो सकते हैं और टेस्ट्स के द्वारा ही डॉक्टर ये पता लगा सकते हैं किस वजह से। तो डॉक्टर साहब, ये जो कब्ज को लेकर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया है रघुवीर।

0: धीमान जी ने देहरादून से लिखा है कि इन्हें बचपन से पेट में कब्ज है, बहुत सारी दवा इन्होंने ली पर कोई आराम नहीं है, तो इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
1: दो चीज बताना चाहूंगा इसमें। अगर कब्ज का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारे शरीर में स्टूल बनता है, स्टूल बनता है जो खाना हमने खाया, वो जो नहीं पचा वो बाहर निकलता है। तो अगर स्टूल पर डे सबको हो रहा है तो वो कब्ज नहीं, हम फील करते कि वो कब्ज है, कब्ज नहीं है वो। इट्स कॉल्ड परसिव्ड कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको स्टूल पर डे हो रहा है तो वो नॉर्मल है और चिंता नहीं करनी है। बहुत लोग को लगता है कब्ज, स्टूल पास होता ही नहीं है हफ्ते हफ्ते तक, दो दो हफ्ते तक, वो एबनॉर्मल है,
0: वो एबनॉर्मल है,
1: सर्टली एबनॉर्मल है, और उसकी जांच होनी चाहिए, इलाज होना चाहिए। तो हमने देखा कि जितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, कम से कम आधे लोगों को जो कॉन्स्टिपेशन है वो परसीव्ड है। हमें बताया गया बचपन से ही और सिखाया गया इनफेक्ट कि स्टूल रोज पास करना जरूरी है। और ये देखा है हम, ये लोग मेडिकल साइंस पे कहते हैं कि अगर आप तीन स्टूल पर डे आपको हो रहे हैं, तीन स्टूल पर वीक हो रहे हैं, वो नॉर्मल है,
0: नॉर्मल है,
1: नॉर्मल है। अगर आप स्टूल आपको आज नहीं हुआ कल हो गया तो नो प्रॉब्लम्स।
0: तो तीन स्टूल पर वीक इज नॉर्मल,
1: इज नॉर्मल, नॉर्मल। और हमने स्टडी करी यहाँ पे और पूरी इंडिया में स्टडी हुई है कि इंडिया में जो एवरेज है टू स्टूल पर डे है, सुबह शाम, सुबह शाम, राइट, वो नॉर्मल है। फिर भी लोग कहते हैं कब्ज है, कौन सी कब्ज है?
0: तो ये आप डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दिया। एक कॉल ले लेते हैं।
1: तो इसमें चिंता नहीं करें, अगर वो स्टूल रोज पास हो रहा है तो चिंता नहीं करनी है, वो फीलिंग होती है लेकिन वो कब्ज नहीं है, चिंता नहीं करें इसके लिए।
0: जी जी। हेलो,
2: मेरा, मैं सीपी सिंह बोल रहा हूँ।
0: हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मेरा सवाल थोड़ा डॉक्टर साहब से ये है कि मेरा सब कुछ ठीक है, कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेट के नीचे वाले भाग में सवेरे सवेरे हल्का हल्का पेन होता है और थोड़ी देर बाद पेन बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने डॉक्टर से ये यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पे चेकअप वगैरह सारे चेकअप कराए थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, लीवर का भी चेक है तो लीवर भी ठीक बताया, कोई भी इस पे कोई, और वो अल्ट्रासाउंड में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम निकली नहीं। तो लेकिन ये क्या हो सकता है, किस चीज के, या ये गैस की प्रॉब्लम है, किस वजह से, ये थोड़ा सा
1: सिंह साहब अच्छी बात है कि अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें कुछ कुछ खराबी नहीं निकली, तो बहुत अच्छी बात है ये। और पेन के अगेन बहुत से कारण होते हैं पेट के अंदर में, अगर आते थोड़ी सी ज्यादा तेज चले तो भी पेन होता है, तो उसकी दवा आपको डॉक्टर जरूर दी होगी, आप वो दवा लें और होपफुली वो ठीक हो जाना चाहिए।
2: दवाई तो ली थी, वो ठीक हो गया था उस टाइम पे। असल में क्या, जैसे जैसे थोड़ी देर स्टूल पास करने के बाद में थोड़ी देर खड़े हो गए या आधा घंटा खड़े हुए, तो उस समय थोड़ा वीकनेस महसूस होती है, बाद में वो नाश्ता वगैरह करने के बाद ठीक हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
1: कोई चिंता नहीं करने की बात, मुझे लगता नहीं कोई बड़ी बात है इसमें, और आपने डॉक्टर को दिखाया ऑलरेडी और टेस्ट कराए हैं, टेस्ट ठीक है, चिंता न करें प्लीज।
2: अच्छा,
0: तो डॉक्टर साहब आपने कहा चिंता ना करें, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो स्ट्रेस और तनाव के कारण ही उत्पन्न हो जाती है।
1: ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत सी बीमारियां फंक्शनल होती हैं, अंदर बनावट पे खराबी नहीं है, और ये मान के चलें कि हमारा जो हार्ट है ना वो शरीर के अंदर में है तो वो बचा हुआ है, हमारा पेट और आपकी जो सांस की नली है ना पूरे इन्वायरमेंट से खुली हुई है, मुंह से खुली हुई है, तो आप गंदी हवा को भी ले रहे हैं, आप खाना भी कुछ कुछ इधर उधर खा रहे हैं, तो सारा कुछ पेट के अंदर जा रहा है। तो पेट के सिम्टम होना बहुत वाजिब है, डिस्कम्फर्ट, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होना, कोई ऐसा फूड खा लिया उसे वो नहीं ठीक रहा तो थोड़ा हल्का दर्द होगा, कल ठीक हो जाएगा वो।
0: अगर दर्द ऑन एंड ऑफ हो रहा है और ठीक हो जाए तो इट्स नॉट अ,
1: अगर परसिस्ट नहीं कर रहा तो
0: इट्स
1: नॉट अ प्रॉब्लम।
0: ओके सर, ये एक मैसेज है पटना से है निशा जी, एज है इनकी 52, लिखा है कि इनकी एक आदत है कि रोज एक मुट्ठी मूंगफली खाती हैं, लंच के बाद खाती हैं, तो क्या ये खाना ठीक है मूंगफली?
1: हाँ, नट्स से ले सकती हैं, बट ये ध्यान रखें इसमें काफी ऑयल होता है और नट्स आर गुड फॉर हेल्थ, बट एक मुट्ठी अब कितनी बड़ी मुट्ठी है वो देखना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि मूंगफली वगैरह जो सर्दी के खाद्य हैं, तो गर्मियों के मौसम में अगर हम मूंगफली खाएंगे या कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं अगर ज्यादा हम खाएंगे, तो क्या इनसे शरीर में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं?
1: मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बैड इफेक्ट होंगे। बैड इफेक्ट होंगे कि उसमें जो ऑयल ले रहे हैं आप, उसकी जरूरत आपको है या नहीं है।
0: ओके अच्छा, रुड़की से इंदु जी पूछती हैं कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन इनडाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म?

0: मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो हम भी खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ऑल्सा, सबकी बॉडी के अंदर में जो यूज होता है वो, पर हम खाते वो ब्रेक होता है। हमने सपोज हमने रोटी खाई, रोटी जो अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके या प्रोटीन होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में बनते हैं टूट करके, एंजाइम से टूट करके, वो फिर हमारे शरीर पचते हैं, फिर बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, फिर उससे प्रोटीन बनता है। हमने जो प्रोटीन खाया वो प्रोटीन पचता नहीं है, उसका ब्रेक डाउन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और फिर बॉडी के अंदर बनता है। दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, जो कि लीवर के अंदर होती है। इनडाइजेशन का मतलब है कि पेट में कोई खराबी हुई, वो दैट्स कॉल्ड इनडाइजेशन। तो दो अलग अलग चीज है।
1: तो डॉक्टर साहब, इनडाइजेशन की बात पर मुझे याद आया कि गर्मी के मौसम में पर्टिकुलरली फूड पॉइजनिंग के बहुत केसेस आते हैं। हम थोड़ा सा भी कोई बाहर का खाना खा लेते हैं, कोई मन जो चटोरा हो जाता है तो इधर उधर के स्पाइसी फूड खा लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, इनडाइजेशन भी हो जाता है। ये भी गर्मी में आम होने वाली समस्या है।
0: ये बहुत कॉमन है इनडाइजेशन, और मोर इम्पोर्टेंट फूड पॉइजनिंग, और ऑल्सो उससे इम्पोर्टेंट है, फूड पॉइजनिंग हुई तो आप ध्यान रखिए कि एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है आपको। मोस्ट फूड पॉइजनिंग वायरस से होती है, तो आपको दस्त लगेंगे या पेट में डिस्कम्फर्ट होगी, कुछ उल्टियाँ होंगी। इस वक्त में आप पहला काम करें कि ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सब जगह मिलता है, फ्री मिलता है, वो जरूर लें। अगर वो नहीं मिलता तो आप चीनी और नमक मिला के पानी पिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को डायरिया हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, उसको रिप्लेस करना, दैट्स ओनली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर एक्यूट डायरिया। कुछ केस में जहाँ फीवर है वहाँ पे एंटीबायोटिक देते हैं। एक दिन की डायरिया हुई, एंटीबायोटिक जरूरत नहीं है इसमें और नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली वायरल होता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है। इलाज है कि वाटर लॉस हुआ है, रिप्लेस कर लें।
1: और अगर तुरंत हम ORS अगर घर में ना हो या केमिस्ट के पास ना जा सके, तो घर में ही पानी में चीनी और नमक थोड़ा थोड़ा सा मिलाकर।
0: और ये बताया गया कि ये बड़ा सा सिस्टम बनाया है WHO ने, कि जिन लोगों को अपने छोटे गांव में वहाँ ORS नहीं है, तो एक जग पानी ले, एक लीटर पानी, एक बोतल पानी ले ले, उसमें एक मुट्ठी शुगर और एक चुटकी नमक डालते हैं, तो ये पूरा है, पक्का है।
1: तो बहुत सारे इलाज घर बैठे हम कर सकते हैं गर्मियों के इस मौसम में। तो डॉक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अब वक्त है कि हम कहें डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोविंद मुखर्जी जी, थैंक यू सो मच आज के इस प्रोग्राम के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि गर्मियों के जो दिन होते हैं ना, बहुत कम लोगों जो कहेंगे कि हमें गर्मियां पसंद है, लेकिन अगर हम सावधान रहें और सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तो गर्मियों के ये दिन भी हंसते खेलते और खुशी खुशी बीत जाते हैं। आज का प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गोविंद मुखारिया, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दैट वॉज रेडियो डॉक्टर टुडे।
0: नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग डेढ़ दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता रक्षा सेवाओं, नेतृत्व, सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत

0: बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहां मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाने का अवसर मिल रहा है।
1: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
0: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
1: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
0: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
1: जी।
0: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूँ तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आज़ादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
0: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी मेरे बचपन की तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर की। ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
1: जी।
0: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया। बायो में मेरा काफ़ी रुझान था, काफ़ी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
1: अच्छा।
0: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहाँ से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहाँ से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिला, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मुझे एडमिशन ली, एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग। तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का, लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे। लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने

0: सपना छोड़ दिया, वो बात नहीं होती, सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है।
1: ओह सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने।
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेज कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी। सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में। सो लाइफ तो सेट थी एज अ यंग पर्सन। मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम। एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है, बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम। सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए, एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की। उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुँचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, SSB देने के लिए। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड। और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूँगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB। वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा।
1: अमेजिंग। और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें।
0: जी बिल्कुल।
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना। तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की। इसके आगे की यात्रा की बात आप से बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है।

0: क्या दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओ नाइस, अच्छा अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया, क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफ़ी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज़ जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नज़रों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज़ थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज़ बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही

0: थी जो आपको लाइफ आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है. तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स. आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है. तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है. सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस. तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें.
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए. लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज़ पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है. सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके. सो उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है. अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा. और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सेकंड सेकंड का भी बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकंड का बहुत बहुत मेजर इम्पोर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग. हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए जैसे आपने कहा बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. कोई भी एक चीज़ अगर ख़राब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी.
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है. तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है, मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फख्र से सब आपका नाम लेते हैं.
0: जी, लीडरशिप में मैं तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगी. एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल. आप अपनी टीम को अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा. वो होता है लीड बाय एग्जांपल. और तीसरी चीज़ है आपकी टीम. आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है. दैट इज़ वॉट इज़ लीडरशिप फॉर मी.
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है. तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ. तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने, ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है. बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं, ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं. आप रिटायर्ड हुई हैं लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं. तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
0: जी देखिए, महिला या मर्द,

0: मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है. फॉर दैट मैटर इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
1: जी.
0: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला हो के मैंने नहीं की है या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है. तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है. सो एज ए वुमेन अगर आप मुझे पूछे तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है ना कि बाहर. बाहर सबको दुनिया एक समान देख रही है और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है. तो एज अ वुमेन मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए. आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं.
1: जी बेहतरीन. मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है. ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है. तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं या आर्मी नेवी एयरफोर्स ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है. हैट्स ऑफ टू यू. आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर. और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफ़ी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी ज़िंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफ़ी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक
1: डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिंजेंट बना था। और मैं उस कंटिंजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ। और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो जैसे मैंने आपको बताया वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है। वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो आपको पूरे कंटिंजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है
0: पूरे 14 किलोमीटर।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आप आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले। और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी
0: जी,
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि उस राजपथ पे मैं चलूं। क्योंकि उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। awesome. और जब आप वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
0: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए

0: एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाए, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज़ पे जाना चाहूँगी जहाँ मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है। क्योंकि एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
0: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
1: जी बिल्कुल, और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल, और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
0: क्या बात है।
1: सो उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
0: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती है?
1: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है।
0: 2-3 दिन में?
1: जी हाँ। और उसके पहले अगेन हर एक चीज की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें, और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है
0: जी।
1: क्योंकि जैसे कहते हैं, कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है। लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली हूँ।
0: ओह माय गॉड।
1: बट तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो, आप वहां पे होते हो जहाँ पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है, और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
0: इनर स्ट्रेंथ।
1: वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
0: Awesome. कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो मतलब ऐसा, जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी
1: जी।
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है
0: जी।
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो। लेकिन आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को, जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस, जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो
0: जी,
1: ऐसे तो काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूँगी कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने, मतलब मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है
0: जी।
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा FCAT और CDS जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए?
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सके। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। सो तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीज़ें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूँगी फौज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में ज़रूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी। तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम्स हैं, FCAT है, जैसे एयरफोर्स के लिए FCAT है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल इन ऑल पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है। उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज़्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज़्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहाँ मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, PT, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही
1: जी,
0: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर कि जब आप कह रहे हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

संदेश टू सोल्जर्स का लास्ट सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशन उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं।

0: अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज़ जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब

0: लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये मैं करूँगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफ़ी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज़, कोई काम करने के लिए, और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें,
1: जी
0: और किसी भी चीज़ के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज़ से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश टू सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका, और दोस्तों सुनते रहिए

0: देश टू सोल्जर्स, हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलांच तेरे वीरा तो कोहां दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी सब कुछ भुला दे।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन प्यारे जी, गुड इवनिंग। शाम के 7:03 हो चुके हैं। FM रेनबो से शुरू हो चुका है प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हो चुका है तुहाडा दोस्त मोहित रूबल। तो जनाब, शाम हो चुकी है, है ना जी, शाम हो चुकी है। मैं कहना जी शाम थोड़ी जल्दी हो गई है, पहला हो गई है। एंड इदा लग रहा है कोई ना कोई फिल्मी सीन शुरू हो लगा, क्योंकि नेरी वाला सीन बनया होया, हल्की हल्की कितने बारिश भी शुरू हुई है। तो मतलब मैसेज तुहानू पहुँच गया सी कितना कितने कि भाई फिल्मी दुनिया अज खास होएगा। जी हाँ, फिल्मी दुनिया इस करके भी खास है क्योंकि जिस सितारे बारे असी गल करन जा रहे हैं, क्या खूबसूरत घरेलू फिल्म इन्हां ने बनाईया ने। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम फिल्मी दुनिया दे विच आज एक ऐसे फिल्म निर्माता दे नाम है जिसने हिंदी फिल्मों नू सिर्फ फिल्मों नहीं परिवारां दीआं भावनावां दित्तीआं। एक ऐसा बैनर जिसकी फिल्म आउंदी सी तां पूरा परिवार बिना झिझक सिनेमा हाल पहुंच जांदा सी। जी हाँ दोस्तों, असीं गल कर रहे हां बॉलीवुड दे महान प्रोड्यूसर राजकुमार बरजत्या जी, या फिर कहिए राजश्री प्रोडक्शन दी। सो बहुत सारी गल्लां करांगे अज राजकुमार बारे, ते उना दिया बैनर हेठ बड़िया फिल्मों बारे। आओ सब तो पहला गाना इंजॉय करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत गाना, ये गलियां ये चौबारा।

क्या बात है, मतलब सब सच्चियां गल्लां, सच्चियां मुच्चियां गल्लां तुहानूं फिल्म दे विच देखण नूं मिलणगियां, जिहड़ियां फिल्मां बड़जात्या जी ने बनाई, राजकुमार बड़जात्या जी ने। सो वैसे बड़े घट लोग जानते होंगे कि राजकुमार बड़जात्या जी ने, यानी कि राज श्री प्रोडक्शन ने कुछ ऐसे कलाकारां नूं मौका दिता जो कि अज दे समें दे विच भी बहुत वड्डे सितारे ने। जी हाँ, वैसे तो उन्होंने होर भी किसी भी प्रोडक्शन हाउस से मौका मिल सकता सीगा, पर राजकुमार जी दे बैनर हेठ मूवी रिलीज़ होना अपने च बहुत बड़ी गल सी। जी हाँ, मैं गल कर रहा बॉलीवुड दे भाईजान सलमान खान नालों नाल भाग्यश्री एंड माधुरी दीक्षित जी। जी हाँ, सलमान खान ते भाग्यश्री जी की पहली फिल्म जिहड़ी सीगी मैंने प्यार किया, वह भी जिहड़ी ये राजकुमार बड़जात्या जी ने ही बनाई सी। एंड सलमान खान, भाग्यश्री एंड ईवन माधुरी दीक्षित किसी होर मूवी पहली बार लॉन्च करने वाले भी राजकुमार बड़जात्या जी ही सन।

क्या बात है, खूबसूरत गीत लता मंगेशकर एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज़ दे विच। एंड सारे ही गाने वैसे एसपी बाला सुब्रमण्यम ने ही गाए इस मूवी दे। इस मूवी की बड़ी खास गल है रही, पहली गल तो सलमान खान ते भाग्यश्री नू लॉन्च किया गया बरजातिया जी वालों, एंड ईवन डायरेक्शन भी उन्होंने फैमिली मैंबर यानी कि सूरज बरजातिया जी ने ही की। इस तो अलावा इस मूवी ने पहली बार ऑन स्क्रीन एक कुड़ी मुंडे की दोस्ती नू एक सोहना जहा एंगल दिता, एंड बहुत सारे डायलॉग्स जोड़े ने काफ़ी साल इंडिया के बड़े कॉमन ज रह गए, जिमें भाग्यश्री बोलती कि दोस्ती मैनू सॉरी ना थैंक यू है ना, एंड फिर बड़े प्यार दे ना, फिर कभी कबूतर जा वाला गीत, मतलब एड्डी प्यारी क्योंकि किन्ने ही साल है जिहड़ी फिल्म है पर्दे ते इसने राज किया, एंड हजे भी अगर टीवी ते लग जावे तो बहुत सारे जिहड़े पुराने 70s 80s वाले लोग ने उस फिल्म नू देखना पसंद करते ने। एंड जिमें मैं दस्या कि राजश्री जिहड़े ने उन्होंने फैमिली सिनेमा उन्होंने फिल्मों नू फैमिली सिनेमा कहा जाता सीगा, तो हर एक मैंबर की पसंद जरूर कोई ना कोई करैक्टर जिहड़ा है वह मनोमनी कह लेंदे सी कि हाँ भाई आह करैक्टर जिहड़ा है मैनू पसंद सी। असल दे विच राजकुमार बरजातिया खुद बहुत ही ज़्यादा सादगी वाले इंसान से, मीडिया तो हमेशा दूर रहना, कोई कॉन्ट्रोवर्सी कोई ऐसी गल नहीं, पर फिल्म इंडस्ट्री दे विच उन्हां दी बहुत सारी इज्जत सी। इंजॉय करे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया अपने दोस्त मोहित रूपल के नाल।

हमें पता लग गया है कि हम आपके यानी कि वो आप हमारे थे कौन भाई थे कि है बाकी बॉलीवुड दे ऐसे एक महान एक कलाकारां दी फैमिली जिन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत फिल्मां बहुत खूबसूरत गीत स्टोरीज जिहड़ियां कि लाइफ लोंग जदों मर्जी देखो तुसीं एंटरटेन होवोगे तुसीं इंजॉय करोगे एंड तुसीं इवन बार बार अपनी फैमिली दे नाल सेम चीज़ां ते बार बार हस सकते हो। नहीं तो अज्ज कल दे समें दे विच तुसीं अगर एक सीन देख लिया है फनी है अगला सीन सेम भी है तुसीं कहोगे वट रबिश सेम चीज़ां अगेन एंड अगेन। बट अज कल जनाब तुसीं मतलब ओ फिल्मां दा दौर। ओके जी अगली फिल्म जिहड़ी है मतलब ओ वी फिल्म बड़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एक तो हम साथ साथ हैं फिर प्रेम रतन धन पायो फिर एक होर फिल्म विवाह जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई अमृता राव एंड शाहिद कपूर की उन्होंने बारे भी गल करांगे। पर एक होर गाना मैं ना हम आपके है कौन मूवी का सुनना है जो कि थानू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो इंजॉय करो इस गीत नूं।

जी हाँ दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। शाम दे बज चुके ने 8:03 एंड प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी मस्ती जंक्शन। जी हाँ, जंक्शन यानी कि गड्डी जिहड़ी है पूरी जंक्शन ते, यानी कि तुहाडे जिहड़ा पॉइंट है जिथे आके गड्डी खड़नी है उत्थे गड्डी आके खड़ चुकी है। ते गड्डी दे जिहड़े टीसी ने या चलो ड्राइवर कह लो, ड्राइवर जिहड़े ने ओह मैं यानी कि मोहित रुबल तुहाडे सामने। तो जनाब, इस ट्रेन दे विच, इस जंक्शन दे विच, इस गड्डी दे विच तुसी भी सफ़र करना है। एंड सफ़र जे करांगे ते तुहानू पता ना कि वक्री वक्रियां मतलब प्रजातियां, जातियां, आवाज़ां, शकलां, रंग रूप, मिजाज, अंदाज होंदे ने ट्रेन दे विच। सो कुछ ऐसा ही असी अज दे प्रोग्राम विच करन दी कोशिश करनी है। तुसी जनाब यकीनन कोई ना कोई करैक्टर जिहड़ा है उहदी नकल हमेशा तुसी कीती होवेगी। जिवें बहुत सारे लोग ने घरां दे विच जदों रहिंदे ने ते आले दुआले जदों गोल गप्पे वाला भाई आंदा ते गोल गप्पे वाले भाई दी आवाज़ लगाउणी शुरू कर दिंदे ने गोल गप्पे, या फिर जिहड़ी लोकी गिरी वेचदे ने या नारियल पानी वेचदे ने कच्ची गिरी, मतलब अलग अलग आवाज़ां, अलग अलग चीज़ां जिहड़ियां ने उह हमेशा कॉपी करन दी कोशिश करदे ने। या फिर अगर कोई फिल्म देखदा है ते फिल्म दे विच वी कोई किरदार इन्ना ज़्यादा पसंद आ जांदा है ते उहदी ही नकल करना शुरू कर दिंदे ने, जिहदे शोले मूवी दे विचों गब्बर दी कितने आदमी थे। मतलब मैं तां डेफिनेटली नहीं कर पा रहा, पर मैं भी कुछ कुछ कर लैंदा वां, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ। ਖੈਰ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 0181 23 42 174। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੱਕ ਜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 0181 23 42 174। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਬਈ

0: हाँ जी हेलो।
1: हेलो। हाँ जी,
0: हाँ जी।
1: मेरी अपनी आवाज है। हाँ
0: ओ
1: जी,
0: नहीं,
1: हाँ जी, चल पे।
0: चल पे। ओ मैं बस
1: अच्छा,
0: थोड़ी
1: चल
0: नकल, मैं कह बाकी दी नकल उड़ानी, मैं तुहाडी नकल उड़ा रहा। कौन साहब गल कर रहे ने? हाँ
1: मैंने चार को बुलाया, लग ही गया।
0: जी, हाँ जी। सर तुहाडा नाम की है?
1: मेरा सुरेंद्र कुमार सूरी, अमृतसर तो बोल रहे हैं।
0: सुरेंद्र कुमार सूरी, अमृतसर तो। ठीक है
1: हाँ
0: जी।
1: जी,
0: सुरेंद्र जी, तुसी काम काज की करते हो?
1: मैं कोके बेचता जी।
0: ओ क्या बात है, कोके जड़, कोके जड़दे हो फिर?
1: कोके बेचन जाइए, बाहर जाइए कोके बेचन।
0: तुही तां चलो की होके लाने होणगे, पर चलो किसी दी भी आवाज कट के सुनाओ सानू फिर।
1: मैं साढ़े ना पतीसा बेचन आना होंगे पहले,
0: अच्छा
1: गोटे पित्तल तो पतीसा बचपन के
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: उस तो बाद फिर एक हमारा गोलगप्पे बेचना है, कांजी वाले गोलगप्पे।
0: ठीक है, वधिया वधिया। सुंदर जी, किदा प्रोग्राम अमृतसर? सोहना तरीके सुनता है, बिल्कुल साफ सुनता है।
1: बहुत साफ सुथरा, बहुत वधिया।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। रात के पूरे 9:43 हो चुके हैं। FM रेनबो के प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी दिल चाहता है। थोड़ा दिल की चाहता है, क्यों चाहता है, किवें चाहता है, किहड़ा गाना सुनना चाहता है, किस शहर तो चाहता है, तो कितने बैठ के चाहते हो, सानू हर एक डिटेल जी लेके भेजो। बस बहुत ही नहीं, बस अपने गाने का नाम, चाहे हिंदी फिल्म का है चाहे पंजाबी फिल्म का है, बट हाँ फिल्मा दे गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम तुसी जो है इंजॉय करोगे जिसका नाम अजे दिल चाहता है। एंड सानू तुसी मैसेज भेजना है साढ़े वट्सअप नंबर पर 98-55-10-10-27-9-8-55-10-10-27। चलो जी, सानू मैसेज काफ़ी समय पहले ही किसी ने भेज दिता सीगा। इकबाल सिंह चौहान अमृतसर तो, आर जे सर मोहित रूबल जी नमस्कार, प्रोग्राम दिल चाहता है में एक हिंदी सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। सॉन्ग नेम जिंदगी प्यार का गीत है, मूवी नेम सोतन, और ये हमें फरमाइश जो है भेजी है, ये भेजी है इकबाल सिंह चौहान जी ने अमृतसर तो। जिंदगी प्यार का गीत है, मैनू मैं लगता गलत तो नहीं गा रहा, मैं हमेशा गाना गलत गा दिंदा वा। ओके, और इसको किसने गाया है, लता मंगेशकर जी ने। ठीक है जी, मुझे गाना मैं ढूंढ लिया है। लिखा, मैंने जब भी मैसेज 8:55 पर किया है तो रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती है, इसलिए आज मैसेज पहले कर रहा हूं। आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज अद्भुत है, फिल्मी दुनिया प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत सॉन्ग प्ले करते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हूँ अगे वधदे हां, अगला मैसेज सानू पहुंचे है जी पिंड वड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल जलंधर तो मास्टर मोहन लाल चौंकी अरविंद कुमार, तो थैंक यू सो मच जी प्रोग्राम च मैसेज भेजन के लिए। अगला मैसेज आया मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन और कविता गोड, हमारी प्लेलिस्ट में से या कोई भी अन्य सदाबहार गाना सुना दीजिए, धन्यवाद शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगे वधदे हां, अगला मैसेज आया कार्यक्रम पेशकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, सत श्री अकाल, आप कैसे हो जी। फिल्म का नाम अब तो ऐसे ना थे, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, गीत के बोल तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। ओहो ओके, नहीं जी दोबारा पढ़ते हैं। कार्यक्रम दिल चाहता पेशकर्ता को प्यार भरा नमस्कार, आपकी प्रस्तुति लाजवाब होती है जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म आशा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी, गीत के बोल, जाने हम सड़क के लोगों से दो महलों वाले क्यों जलते हैं। अच्छा जी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।

अगला मैसेज हमें आया है, लिखा है, सत श्री अकाल फिल्म काम चोर, आवाज लता मंगेशकर जी की बोल, तुस संग प्रीत लगाई सजना, गांव खांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से, राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। अगला मैसेज आया जी, दिल चाहता है कार्यक्रम पेशकर्ता को सादर नमस्कार, फिल्म दिल का क्या कसूर, आवाज आशा भोंसले एवं कुमार शानू, गीत के बोल मिलने की तुम कोशिश करना, सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। तो जी फिलहाल मैं सुनने जा रहा हूँ ये गीत, जिंदगी प्यार का गीत है जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फरमाइश पूरी की जाए, आपको मैसेज भेजना पड़ेगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 9855010027।

जी। और जो गीत है वो कौन सा गीत है जो आपके दिल में है, जिंदगी का वो वाला गीत जो आप सुनना चाहते हैं हमारे साथ प्रोग्राम दिल चाहता है में। मैं हूं आपका दोस्त मोहित रूबल और आप सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को FM रेनबो यानी कि 102.7 FM रेनबो पर, या फिर आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर के ऊपर। तो जनाब अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि सानू भेजा है। नमस्कार जी, हार्दिक अभिनंदन आपकी दिलकश पेशकश के सदगे रेनबो जलंधर की बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। ओके, गीत मेरे बचपन तू जा, सवे लता मंगेशकर फिल्म कच्चे धागे, चंडीगढ़ सतीश नेचा बिमला नेचा। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अगले मैसेज सर, प्रेम नमस्कार हार्दिक अभिनंदन, मैं FM रेनबो जलंधर माई फर्स्ट चॉइस गीत रमता जोगी रमता जोगी। ओके, मैं प्रेम का प्यों। ओके, मैं गाना गाते गाते गाना ढूंढ भी लिया और फिल्म ताल आवाज अलका याग्निक सुखविंदर सिंह नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज प्रोग्राम दिल जाता है प्रस्तुतकर्ता को प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार, मूवी कटी पतंग गीत प्यार दीवाना होता है, गांव नथाणा पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसविंदर जस्सी सीता गीता, खुश रहो आबाद रहो। ओके जी, गीत वो है, हाँ जी संगीत वो है जब किसी की। ओके, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। अगला मैसेज जी, दिल चाहता है मैं नमस्ते कबूल करो जी, कोई भी गीत में शामिल करें। चक 15 PCSPS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल सिंह जोसन एंड वैनकूवर कनाडा से रॉबिन्स।

सिंह जोसन। ओके जी, थैंक यू सो मच जी जोसन परिवार। अगला मैसेज, फिल्म हीना बहू बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। बेदर्दी नहीं, मैं आपको कोई और है गाना पसंद करता। धतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पर्स मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, इतने सारे मैसेज आ गए इकट्ठे। ओके जी, कोई गाना नहीं, अजी तो 9:12 हुए ने, एक होर गाना सुनते हैं, गीत तो बाद अगले मैसेज रीड करते हैं। फटाफट सानू मैसेज भेजो 98 55 10 10 27 ਦੇ ਉੱਪਰ।

ओके जी, प्रेम रोग दा कोई भी गीत, ये प्यार था या कुछ और, ये गलियां ये चुबारा, ये दिन क्यों नहीं निकलता, भावरे ने भंवरे ने खिलाया फूल, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। जी आप सुन रहे हैं मूवी प्रेम रोग 1982 में रिलीज हुई का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और सुरेश वाडकर जी ने। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त मोहित रुपल के साथ।

0: महीना हुई खतो नहीं लिखेंगे,
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखें?
2: जी एंजॉय करे प्रोग्राम दिल चाहता है एंड बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस एंड गीतां दे नाल मैं तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तुसी किवें एंजॉय कर रहे हो? तुसी भी मैसेज कर सकते हो, दस सकते हो। अगला मैसेज सानू आया जी, नमस्कार रिस्पेक्टेड होस्ट जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, सॉन्ग गरिया तेरे आने से, थैंक यू सो मच। फिल्म ब्लैकमेल, पल पल दिल के पास, प्यार भरा नमस्कार, हनुमानगढ़ टाउन से, राजस्थान से, रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान साहब मैसेज भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। करमवीर सिंह पॉल तो पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो, फिल्म आण में सुनने का गीत रंग रंग फूल खिले हैं अबान में सतना, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, कैथल हरियाणा से, मधु नायक, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज सत श्रीकाल दिल चाहता है रूबल जी, बलविंदर सरा, गुंतास, रसंदीप, मनिंदर सरा, पिंड मोरजन, सिखा, हनुमानगढ़ तो, फिल्म फकीरा गी दे बोल, दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, क्या बात है। अगला मैसेज फिल्म प्यार का मौसम सॉन्ग, तुम बिन जाऊं कहां, संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भरत, कमल सानी, पींगा वाला चौंक, राज अंदर, फिल्म प्यार का मौसम सॉन्ग तुम, ओके। अगला फिल्म धड़कन सॉन्ग, तुम दिल की धड़कन रहते हो, कनेरा मुला पटियाला से, बत्ता परिवार, मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बट्टा। अगला मैसेज नमस्कार जी, कृपया हमें किसी भी गीत में शामिल करें, मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ सिटी से शिफाली, शेफी, डेविस, विमला, सतीश और पुराने जबरिवार, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। हेलो मैं अनमोल डलहौजी से गाना सुनना चाहता हूँ, क्या मत फिल्म का खिड़की दरवाजे बंद रखना, ओके जी, थैंक यू। अगर मैं आदरणीय प्रसारक महोदय जी, प्यार भरा नमस्कार, फिल्म नील कमल, सर मोहम्मद रफ़ी, तुझको पुकारे मेरा प्यार, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से, नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष महेरकर, ओके जी। फिल्म नील कमल ढूँढता हूँ मैं, नील कमल, जी दोस्तों प्रोग्राम भी के बारे में आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं ये भी आप हमें लिख के बता सकते हैं, ठीक है जी। गाना का नाम किसी का, तुझको पुकारे मेरा आजा, तुझको पुकारे।

मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली के उनको

जी जी जी दोस्तों, एंजॉय करे प्रोग्राम दिल चाहता है और दिल चाहता है प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए। मैसेज आया है, फिल्म मिलन बोल आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, गायिका लता मंगेशकर, पारस मनी रेडियो श्रोता क्लब और गांधी चौक भाड़मेर राज्य से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और इस डांगरी से बाबूराम जयपाल और खलीफों की बावड़ी से खुद बख्श खलीफा रेडियो दीवाना। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी प्रोग्राम में मैसेज भेजने के लिए। और जिन दोस्तों की तरफ से आपने भेजा है उनकी तरफ से स्पेशली शुक्रिया। शुक्रिया क्यों वो आपको पता है। अगला मैसेज जी, मोहित त्रिबल साहब, मैं सुन रहे हैं, खुश रहो हमेशा, गॉड ब्लेस यू। मिंटू चंदेल जी, थैंक यू सो मच जी। अगला मैसेज, ए आर पंजाबी, आपकी पेशकारी का नहीं कोई जवाब, प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच एनी सोंग लाओ जी, पिंड तेजा मोड़ी अंबाले तो, बंशी लाल संधु मौन प्यारे बूटा मंडी जलंधर तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे जी आपको नमस्कार, हमें भी किसी गीत में शामिल करिए। धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान और बाबू, तहे दिल से आपका शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। अगला मैसेज आया जी, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। ये मैसेज मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, फिर भी थैंक यू। अगला मैसेज है बिंटू सरोवा इटली तो जी, बंटी सरोवा, बंटी जी की हाल चाल, इटली दे सब ठीक ठाक हो, उम्मीद करना तुम बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। अगला मैसेज चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गाने के बोल, एक गगन का राजा, एक चमन की रानी, आवाज़ लता मंगेशकर जी, फिल्म दर्पण। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज साढ़े तक पहुँचे जी, फिल्म गाइड बोल दिल ढल जाए, हाय रात ना जाए, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश। ये मैसेज मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था, आपने फिर से दोबारा भेजा है तो आपको निराश नहीं होने दूंगा। मैं गाना प्ले कर ही देता हूँ, दिन ढल जाए तेरी याद।

अगला मैसेज है, रेडियो के साथ उठता हूँ, रेडियो के साथ सोता हूँ, जब सुनता हूँ नाम अपना तो बहुत खुश होता हूँ, कभी फरमाइश पूरी ना हो तो मायूसी में आपा खोता हूँ, मेरा नाता ही कुछ ऐसा है रेडियो से। जी हाँ जनाब, मैं रेडियो श्रोता हूँ। क्या बात है, बहुत सोना तुसी मैसेज, हिंदी में बताऊंगे। अरे अरे भाई, अच्छा हरियाणा से। अरे भाई खूब अच्छा लिखा है तूने, रेडियो की जय हो, रवि कुमार राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से। अगर आप ही ने लिखा है तो सच बताऊं बहुत खूबसूरत लिखा है। मैंने पहली बार किसी श्रोता की तरफ से श्रोताओं के लिए अपने आप के लिए कुछ अच्छा सा लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मैसेज, प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग ऑफ ताल मूवी। अरे हम लगा चुके हैं, हम ना वो गाना वो चुके हैं, रमता जोगी सुन चुके हैं, फ्रॉम इंद्रवीर अरोड़ा, चेतना, प्रेम कुमारी, अपेक्षा, इनायत केशव, फ्रॉम सुल्तानपुरी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे है, फिल्म दी सिचुएशन ही ऐसी सी, इसनों ही कहते ने प्लेबैक सिंगिंग, हिट सॉन्ग है 1980 का, सब लोग पसंद करते सी, अज भी करते ने। ओके, बेफा हरगिजना थे उसका। ओके जी, अगला मैसेज, नमस्कार जी, रिपीट है पर शामिल नहीं सी होया जी। अच्छा मैसेज तो सी हो भेजा है। ओके, पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा। अच्छा सवेर का मैसेज सीगा। ओके, पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़ो सफीदो मंडी जिला जींद हरियाणा ते जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर किसी भी गीत में शामिल करो, धन्यवाद जी। ओके जी, सुखदेव सिंह, नरेंद्र खोस, सनी मुनी काका, बिट्टू लाडी मोण, मास्टर जनक नगर जलंधर तो दिल से धन्यवाद। ओ मैसेज कितने गया थोड़ा वाला मैसेज, क्या बात है वाला। फिल्म कालीचरण गीत, जा रे जाओ हर जाई, जा रे जाओ हर जाई, अगर ये ही गाना है तो मैं लगाऊंगा क्योंकि गाना अच्छा है। ठीक है, कालीचरण, कालीचरण में मैंने डबल ए क्यों लगा दिया, कालीचरण। ओके, मिल गया, जा रे जाओ हर जाए। ये फरमाइश भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीम्पा और कपिल छीम्पा और ईशान छीम्पा और पूजा परिहार ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।

जी इंजॉय करे प्रोग्राम दिल चाहता है एंड समझ कर रात दे 9:53 फटाफट आप अगे वधदी आ जिन्हें मैसेज रह गए ने सारे पढ़ लैने आ। कृष्णा पाक दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जोड़ा फिल्म सूरज और चंदा गायक मोहम्मद रफी गीत तेरे नाम का दीवाना तेरे नाम का दीवाना सूरज और चंदा तेरे नाम का दीवाना ठीक है जी और बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से फिल्म इजाजत आवाज आशा भोंसले पवन लिम्बा अमरपुर फाजिलका से ठीक है जी थैंक यू सो मच। फिल्म दोरा से गीत खिजा के फूल से आरती जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनेजा पूनम ककनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। अगला मैसेज मिल जाता है नमस्कार फिल्म महबूबा गीत पर्वत के पीछे चंबे का गांव फरमाइश करता पिंड गोविंदगढ़ माजीरा श्री कर्णपुर राजस्थान राजू टुटेजा खुशतिल उर्मिला टुटेजा गुड्डू जीनू मनु शिव सेठी कर्णपुरी समाइल टुटेजा। प्रोग्राम दिल चाहता है पेश करने वाले आरजी नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी किसी भी गीत में शामिल करो धन्यवाद जी पिंड डाकखाना निमनाबाद नेड़ो सफीदो मंडी जिला जिंद हरियाणा जसबीर सिंह अरोड़ा जतेंद्र कौर गुरप्रीत सिंह लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर धन्यवाद करते हाँ जी। मेरे वालों सारे ही मैसेज जड़े ने लै ले गए ने कोई भी एक सिंगल मैसेज जड़ा है वह नहीं रहा सो ठीक है जी हूँ मैं सुन जा रहा इस प्रोग्राम का सैकेंड लास्ट गीत मैं उम्मीद है कि एक मैसेज होर आएगा तो मैं वो गीत भी प्ले करांगा नहीं भी आएगा तो मैं अपनी मर्जी का कोई भी गीत जड़ा लगा दांगा फिलहाल एंजॉय करो इस गीत को।

क्या बात है। बहुत बहुत खूबसूरत गीतां दे नाल अज दी महफिल सजी एंड ओ तां ही मुकम्मल होया क्योंकि बहुत खूबसूरत गीतां दी फरमाए सानू खूबसूरत दोस्तां ने, सिर्फ पंजाब तो ही नहीं, हरियाणा तो, बहुत सारे दोस्त राजस्थान तो, फिर महाराष्ट्र तो, एंड अज नॉर्थ ईस्ट वाले ने हाजिरी नहीं लगाई, बट यस ऑल ओवर इंडिया तो, हाँ अज इटली वाले भाई जान ने जरूर हाजिरी लगाई, बट यस बहुत सारे दोस्त बहुत सारी थावां तो सानू प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। चलो जी हुण रात दे 10 बजन जा रहे हैं, असी हुण प्रोग्राम च अगे वधदे हां ते प्रोग्राम अगला इंजॉय करांगे शामे गज़ल FM रेनबो ते मेरे नाल यानी कि मोहित रूबल दे नाल।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। रात दे 10 हो चुके ने एंड FM रेनबो ते समा हो चुका प्रोग्राम शामे गजल दा। कहां के इश्को मोहब्बत किधर के हिजरो विसाल, कहां के इश्को मोहब्बत किधर के हिजरो विसाल, अभी तो लोग तरसते हैं जिंदगी के लिए कि साहिल से सुना करते हैं लहरों की कहानी, साहिल से सुना करते हैं लहरों की कहानी, ये ठहरे हुए लोग बगावत नहीं करते। ये शेर जो है आपने सुना खुर्शीद अकबर साहब का। इस प्रोग्राम में हम गज़ल, नज़में, शेर व शायरी करेंगे और आपका इंतज़ार करेंगे कि आप भी प्रोग्राम में मैसेज भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9855101027 के ऊपर।

कौन हैं जो फूलों की हिफाजत नहीं करते? वो कौन हैं फूलों की हिफाजत नहीं करते? सुनते हैं जो खुशबू से मोहब्बत नहीं करते। तुम हो कि अभी शहर में मसरूफ बहुत हो, तुम हो कि अभी शहर में मसरूफ बहुत हो, हम हैं कि अभी जिक्र शहादत नहीं करते। प्यारे दोस्त, एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम शामी गजल एफएम रेनबो से, यानी 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से।

सितम की इंतहा पर चल रही है, सितम की इंतहा पर चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पर चल रही है। दिलों पर कहर का मौसम।

है कैसा, दिलों पर कहर का मौसम है कैसा, मेरी बस्ती दुआ पर चल रही है। कि बदन में सांस लेता है समुंदर, बदन में सांस लेता है समुंदर, मेरी कश्ती हवा पर चल रही है। क्या बात है, खूबसूरत गजल जो है वो खुर्शीद अकबर साहब ने लिखी है, जिसने तुसी हुणे सुनिया मेरे को। एंड प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो शामी गजल, समा हो चुका रात दे 10:18, और हुण सुनदे हैं जगजीत साहब जी बड़ी खूबसूरत गजल, ये भी क्या एहसान कम है।

बैठे बैठे कैसे दिल घबरा जाता है, जाने वालों का जाना याद आ जाता है। हस्ती बस्ती राहों का खुशबाश मुसाफिर, हस्ती बस्ती राहों का खुशबाश मुसाफिर, रोजी की भट्टी का ईंधन बन जाता है। कि अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है, अब इस घर की आबादी मेहमानों पर है, कोई आए तो वक्त गुजर जाता है। क्या बात है, खूबसूरत गजल जो है वो लिखी है जहरा निगाह जी ने। तो दोस्तों प्रोग्राम चुन अगे बढ़ते हैं एंड असी हुन रात बज चुके ने 10:24 और हुन इंजॉय करते हैं अगली गजल गुलाम अली साहब की आवाज़ दे विच।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज से तुसी एंजॉय कर रहे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है अपने दोस्त मोहित रूपल दे नाल समा हो चुका रात 10:45।

जी दोस्तों, एंजॉय कर सी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से एफएम बैंड 102.67 मेगाहर्ट्ज़ से सी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वक्त रात दे पूरे 11 बज चुके ने ते साडी अज दे सभा दे सारे ही प्रोग्राम हुण इत्थे खत्म हुंदे ने। सवेरे फिर मिलेंगे 5:55 ते नवे दोस्त नवे प्रोग्राम दे नाल। तद तक लई मैनूं दिओ इजाज़त। शब्बा खैर, जय हिंद।